संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा।

लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। ये प्यारी जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

बाक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे, मस्त रहे, सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

लोग हमें मिल जाते हैं जब हम कहीं जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं कुछ काम के लिए निकलते हैं, और रास्ते में जो मिलते हैं, जिन्हें हम खुद को भी या फिर मिलने वाले लोगों को ये कह सकते हैं कि वो मुसाफिर थे। पर कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आपके जिंदगानी में एक जगह बना लेते हैं कि वो मुसाफिर होने के बावजूद आपके दिल के साथ जुड़ जाते हैं। वो कुछ पल की बातें, कुछ एहसास जहाँ पर चुप्पियाँ थी, कुछ तिरछी नज़रों से आपने उन्हें देखा था, उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान से आपको भी उस बात के लिए धन्यवाद किया था, ये सारी चीज़ें आपके दिल में कुछ ऐसा एक मकाम बना लेती है कि बाद में आपको एहसास होता है कि ये मेरे दिल के लिए सबसे सुकून देने वाला एहसास, यानी कि ये रिश्ता मेरा अपना था। और ऐसे अपने रिश्तों को हम क्या और नाम दे सकते हैं, प्यार तो होना ही था। और ऐसे

मुसाफरी वाली आज की जो कहानी है जिसका नाम है इंतजार। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था और मैं वापस उसे दोहरा रहा हूं कि इस कहानी का मूल भाव जो है वो इंतजार है। अब इंतजार व्यक्ति का भी हो सकता है, इंतजार सही समय का, सही लम्हे का भी हो सकता है, इंतजार हमें अपने दिल से वो निकलने वाली आह का भी हो सकता है, वो चाह का भी हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि मुझे अपने दिल की जो रंजिश है उसे बयां करना है, अपने दिल में जो ख्वाहिश है उसे भी बयां करना है, और मैं सामने वाले व्यक्ति को, अपने चाहने वाले व्यक्ति को मैं अब जान चुका हूं कि मुझे यही चाहिए, तब ये इंतजार खत्म होता है। वरना फिर हम यही सोचते रहते हैं कि वो वक्त आएगा, वो इंसान आएगा, वो लम्हा आएगा, वो शब्द मेरे जहन में आएंगे या फिर मेरे दिमाग में आएंगे, वो अल्फाज जो मुझे मिलेंगे तभी मैं उसको बयां कर पाऊंगा। तो फिर वक्त आपको यही सिखाता है कि आप चाहे दिल के हाथों कितने ही मजबूर हो, पर सही वक्त पर सही बात सही इंसान से सही लफ्जों में या फिर सही आपकी दिल की फीलिंग से कही जाए तो आपको अपना प्यार मिल जाता है। आज की कहानी इंतजार में जो हमारे किरदार है उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, खुशबू और सुमित। खुशबू और सुमित की ये कहानी है जिसमें इंतजार आता है, पर इंतजार से पहले एक लंबी ट्रैवलिंग की बात भी आती है। चलिए इस छोटे से गाने के ब्रेक के बाद मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, यानी आरजे दिलबर के साथ, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज, 2.0 रेडियो पालनपुर पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए।

0: સ્વાવલંબનના સ્નેહથી બનાવેલી રાખડી બંધાશે. બધા જ તહેવારોમાં આવતો ભાઈ બહેનના સંબંધનો પવિત્ર તહેવાર એટલે રક્ષાબંધન.
1: આ રક્ષાબંધન પર ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આયોજિત કર્યો છે રાખી મેળો, જ્યાં ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓની બહેનોના સ્વાવલંબનને પ્રોત્સાહન આપવા તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત રાખડી તેમજ ઘરગથ્થુ અવનવી વસ્તુઓના પ્રદર્શન સહ વેચાણ કરવામાં આવશે. તો આવો, તારીખ 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો, બ્રહ્મર્ષિ હોલ, જહાનારા બાગની પાસે, પાલનપુર.
2: ઘડી કભી રુકી હુઈ નહીં હોતી હૈ જબ વો ટિક ટિક આવાજ કરતી હૈ, પર હમે કુછ એસી પરિસ્થિતિયાં હોતી હૈ, એસા માહોલ હો જાતા હૈ, એસે લમ્હે હમારે આસપાસ જુડ જાતે હૈ કે તબ હમે લગતા હૈ કે યે જો ટિક ટિક આવાજ હૈ વો શાયદ હમે યે બતાને કી કોશિશ કર રહી હૈ કે વક્ત રુક ગયા હૈ. वैसे देखा जाए तो वक्त आगे बढ़ रहा होता है, पर हमारे लिए वो वक्त रुक जाता है, उसी को हम इंतज़ार कहते हैं. दोस्तों, सुमित और खुशबू. सुमित एक बड़ी लंबी यानी 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग पर निकलता है अपने काम से. कुछ 1.5 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा गांव आता है और गांव के बाहर दोपहर का वक्त होता है, करीब 3-4 बजे, और एक कह सकते हैं ना कि टीचर लग रही एक लड़की को ये सुमित को वहाँ पर बस स्टॉप के आगे खड़े हुए देखना, ये कोई संजोग था या फिर खुदा ही जाने कि उनको मिलाने के लिए एक पूरी साजिश थी. क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर मोहब्बत शिद्दत से होती है, दिल से होती है, तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है. ऐसा ही कुछ हुआ होगा. और सुमित ने देखा कि ये टीचर लग रही है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा झोला था और ऐसे कुछ मतलब हाथ में पेन थी, कुछ सोच रही थी, मोबाइल भी था. कुछ करीब 2 साल पहले की बात है. तो उसने गाड़ी को आराम से धीरे से करके, एकदम से तो किसी को नहीं पूछ सकते कि आपको लिफ्ट चाहिए, तो उसने थोड़ा सा आगे जाके एक पानी का मटका रखा हुआ था वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी. वो नीचे उतरा, थोड़ा सा ऐसे अपनी अंगड़ाई ली और फिर एक लोटा भर के पानी पिया, मुंह को साफ किया और फिर मुस्कुराते हुए उसने ऐसे दरवाजा खोलने की जगह पर वहाँ पर खड़े होकर उस लड़की की ओर देखा. लड़की भी उस वक्त अकेली थी, थोड़े से दूर एक ककड़ी बेचने वाली एक औरत बैठी हुई थी और वो भी नींद के वजह से थोड़ा सा ऐसे उदास, गर्मी की वजह से थी. और ये लड़की तब उस तरफ देखती है, तब सुमित की और उसकी दोनों की आंखें मिलती है और सुमित ऐसे इशारों से पूछता है कि आना है, आपको कहीं जाना है. वो लड़की थोड़ी सी आंखों से क्वेश्चन मार्क की तरह अपने मुंह पे सारे रिस्पॉन्स, सारे वो कहते हैं ना हम, कि एकदम से कोई अचानक आपसे कोई चीज़ पूछे तो आप एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, वैसे वो रिप्लाई करती है. तब वापस सुमित पूछना है कि आपको लिफ्ट चाहिए, इतनी दोपहर में शायद यहाँ पे मैंने कोई बस देखी नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं आगे 4 घंटे तक जाने वाला हूँ, आपको रास्ते में कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा. लड़की बोली कि वैसे तो बस आ जानी चाहिए पर आज आई नहीं है, तो शायद लेट भी हो सकती है और मुझे 2.5 घंटे के बाद जो सिटी आता है वहाँ पे उससे पहले निकलना है, वहाँ पे जाना है. तो फिर सुमित ने कहा कि आइए अगर आपको एतराज़ नहीं है तो. और वो ककड़ी बेचने वाली आंटी भी बोलती है हाँ बेटा चले जाओ, क्योंकि अब तक अगर बस नहीं आई तो फिर इस रूट पे नहीं आएगी. खुशबू आती है और गाड़ी में बैठ जाती है. जैसे ही खुशबू गाड़ी में बैठती है, ये नाम हमें पहले से पता है, इसीलिए सुमित को तो पता नहीं था कि ये नाम उसका खुशबू था, पर वाकई वो जैसे बैठती है उसके वो फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम बोले या फिर टैल्कम पाउडर, एक बेहद दिल को खुशनुमा कर देने वाली खुशबू पूरे उसकी गाड़ी में फैल जाती है और सुमित बाग बाह हो जाता है. अब क्या हुआ होगा ये जानेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद. मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज़.

फिर बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम खुशबू है। खुशबू यहाँ पर टीचर के तौर पे नहीं आती, एक सोशल वर्कर के तौर पे आती है। उसकी एक एनजीओ है जो यहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए कुछ काम करती है। पर ओवरऑल तो कुछ ऐसा ही था ये सोचा था सुमित ने। और सुमित ने कहा कि आप हर रोज आती? उसने कहा नहीं, मुझे 10 या 15 दिन में एक दो बार आना होता है, और जब भी प्रोजेक्ट होता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती है या फिर सैटरडे होता है तो मैं आती हूँ। ये सारी बातचीतों के अंदर अंदर दोनों के बीच में, क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता था, तो ये बातचीत ही उनके बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बना रही थी। कुछ सुमित ने अपनी हल्की सी बातें ऑफिस की, अपने वर्क की बताई, कुछ हंसी और ठहाके हुए। इस दोनों में जैसे ऐसा लग रहा था कि सुमित को कि वो पहले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा लग रहा था। और खुशबू ने भी बहुत सारी बातें बताई। एक खुशबू ने बात बताई थी कि जब वो पहली बार साइकिल सीखने के लिए अपने भाई को लेकर बाहर गई थी और फिर गिर पड़ी थी, और आके उसने अपने दादा को ही बताया था, अपने पापा मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि चोट ज़्यादा थी और बिना पूछे वो गई थी। मतलब ऐसी चीज़ें कौन शेयर करता है, तो वो ही करता है कि जो दिल से कुछ किसी के साथ कनेक्शन बना पाता है, और यही कनेक्शन की शुरुआत थी। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि मुसाफिर में मिले किसी व्यक्ति के साथ आप कुछ अपनी अंदरूनी बातें जो शायद आपने किसी को नहीं बताई है वो भी शेयर कर लें। यही तो दिल का रिश्ता होता है। जी हाँ, बातों को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए आरजे दिलबर को, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ 2.0 पर।

जैसे बारिश का मौसम आता है और मोर की पुकार आपने सुनी होगी, तो ऐसा लगता है कि कितनी इंतहा से वो पुकारता है। वो उसका जो सुर निकलता है वो चीर से बादलों को और बारिश को खींच के लेके आता है। अब ये होता होगा नहीं होता होगा ये तो ऊपर वाला जाने, पर ऐसे ही इन दोनों के बातों के बीच में 1-1.5 घंटे के बाद में एक छोटी सी चाय की टपरी आती है और दोनों रुकते हैं चाय पीने के लिए। पर चाय की दुकान पे जाके दोनों ही पूछते हैं कि कॉफी मिलेगी, और वो चाय वाला बोलता है कि सर और मैडम, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये चाय की टपरी है, कॉफी नहीं है। फिर भी वो बोलता है कि नहीं, रुकिए, मैंने कुछ दिन पहले एक गेस्ट के लिए यहाँ पे कॉफी रखी हुई थी जो आए दिन आते रहते हैं, तो आपको आज कॉफी तो मैं पिलाऊंगा, कोई बात नहीं, आप बैठिए। 4 बजे ने आए, शाम के 4, 4:30 बजे दोनों कॉफी के लिए वो वहां पे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था और प्लास्टिक की चेयर पे वो बैठते हैं, और उसी बैठने में सुमित का हाथ खुशबू के हाथ को छू जाता है। सुमित को लगता है कि एक बिजली सी कौन जाती है, और ऐसा ही खुशबू को भी। थोड़ा सा सहम जाती है पर फिर भी मुस्कुरा के बोलती है कि इट्स ओके, दोस्तों में ये होता रहता है। अब बात दोस्ती में आ गई है, बातें दोस्ती में आ गई है, और खुशबू सारे कामकाज के अलावा कुछ कविताएं भी लिखती थी, कविताएं पढ़ती भी थी, और एक बेहतरीन कविता वो उसको सुनाती है। कविता के अल्फाज तो सुमित बोला कि मैं उतना कविता के लिए याद या रट्टा कर सकूं ऐसा कुछ था नहीं, पर उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि खुशबू ये कहना चाहती थी कि साथ चाहे पल दो पल का हो, पर वो पल दो पल ऐसे लगने चाहिए कि पूरी उम्र जी लिया हो हमने। यानी आप पूरी उम्र की जिंदगी अगर पल दो पल में जी सके ऐसा आपको महसूस होता है, तो वो पल दो पल ही आपके जीवन के सबसे बढ़िया पल होते हैं, और वही प्यार का इजहार करते हैं। उस वक्त समझने में थोड़ी देर लग गई शायद सुमित को। सुमित को अच्छा तो लगा पर वो कविता से इतना जुड़ा नहीं था। उसने फिर एक फिल्मी गाना भी उस वक्त थोड़ा सा गुनगुनाया, पर वैसे उसकी आवाज में वो गाना इतना सूट नहीं होता था, पर खुशबू ने उसे दिल से उसको सराहा। बातें हुई, कॉफी की चुस्कियां लगी, छोटा सा एक वेफर का पैकेट लिया, वेफर की वो कुरकुराहट के बीच में भी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे परिवार की बातें भी हुई जैसे लग रहा था कि दोनों डेट पे मिले हैं, पर एक दूसरे को पता ही नहीं था शायद। और 7-8 मिनट हो गए दोनों खड़े हुए, दोनों गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते वक्त भी सुमित ने पहले जाके खुशबू के लिए दरवाजा खोला, उन्हें बिठाया। खुशबू ने भी बहुत ही ताव और चाव से वहां पे बैठा, जैसे लग रहा था कि उसका प्रेमी ही उसको अपनी मर्सिडीज में बिठाकर जैसे सपनों की दुनिया में सैर कराने ले जा रहा हो। ये सारी चीजें जब सुमित और खुशबू मुझे लिखकर भेज रहे थे, तब दोनों के अलग अलग मैसेजेस में मैंने कंबाइन किया तो चीजें मुझे एक मिली है। इसीलिए मेरे लिए ये कहानी बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

कॉर्नर पर ऑटो खड़ी थी उसमें बैठी। उसने पीछे मुड़कर भी देखा। सुमित ने कांच से देखकर उसको हाथ से बाय बाय कहा और कोई लफ्ज की एक दूसरे के पास कोई आवाजाही नहीं हुई और खुशबू की ऑटो दिखती रही तब तक वो खड़ा रहा। फिर वो भी निकल गया अपनी मंजिल पर। वो पेपर नैपकिन में गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, उसने वो अपनी रोज की जो बातें लिखता था उसकी डायरी जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर थे उसमें रखकर वो पहुँच गया। शाम हो चुकी थी, काम हो चुका, डिनर हो चुका, 4-5 दिन भी निकल गए, पर मन में सुमित के लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ वो मुसाफरी में मेरा छूट गया है। पर अब कैसे मिलेगा, न कॉन्टेक्ट नंबर, न पूरा नाम, न सोसाइटी, बस एक ही था कि वो वहां पे रुकी थी। और ये भी नहीं पता था कि खुशबू कौन से दिन जाती थी, क्योंकि उसने बताया था कि वो डिसाइडेड दिन नहीं होता था, वो जब भी उसका दिल करता था उस गांव में जाती थी। उसके बाद 3-4 महीने होने को आए और फिर सुमित से रहा नहीं गया। वो पंखुड़िया रोज पेपर नैपकिन से खोलकर उसे देखता था, थोड़े से दिल को सहलाता था और फिर वापिस उसने 3-4 महीने के बाद 1 हफ्ते तक उसी रूट पर आना और जाना छुट्टी लेकर किया कि अगर खुशबू मिल जाए, क्योंकि पूछा किसे जाए कि खुशबू कहाँ रहती है, ये तो खुशबू थी। बात को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे दिलबर के साथ। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर।

वो कहते हैं ना कि अगर सही वक्त सही जगह पर सही इंसानों के बीच में और उन इंसानों को उस सही बात करने का मौका और सही अल्फाज मिल जाए तो फिर बात बन जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ सुमित और खुशबू के बीच। 3-4 महीने के बाद में वापस दूसरे 2 महीने के बाद में 1.5 महीना शायद हुआ होगा और वापस सुमित ट्राई करता है, नहीं मिलती है खुशबू। खुशबू की ओर से क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। ऐसे ही ऐसे 1.5 साल निकल गया। सुमित के पास बहुत रिश्ते आए। सुमित बताता है कि पर मैं कैसे मान लूं कि खुशबू मेरे से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अब एहसास था कि मेरा दिल तो वहां पर छूट गया है, मुझे उसे वापस लाना है। 1.5 साल बाद वापस तब उसके जहन में आया कि मैंने ये क्यों नहीं किया कि उसी गांव में जाकर वहां के लोगों को पूछा नहीं कि वो कौन थी, कहाँ थी, कैसे थी, मुझे उससे मिलना है। और 1.5 साल बाद ये बात सुमित को उसकी छोटी बहन बताती है कि भैया आपकी स्टोरी में मुझे लगता है कि आपको उस गांव में जाना चाहिए, वहां पे जाके आप रोज पूछते या फिर वहां पे 1-2 दिन रुक जाइए या फिर उसी दिन आप सुबह से शाम तक पूछिए, कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई स्कूल तो बताएंगे, 1.5 साल बाद भी लोग तो वहां पे होंगे और ऐसा थोड़ी है कि उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो अभी 6 महीने पहले तक भी अगर वो काम कर रही है तो वहां के लोग खुशबू दीदी को जानते होंगे, आप उन्हें ले आइए, मुझे दीदी नहीं उसको अपनी भाभी बनाना है। छोटी सी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती अपनी बहन ने जब ये बात उसको कही तब सुमित के जहन में आया कि सच में यही सही वक्त है और वो दूसरे दिन सुबह में छुट्टी लेकर पहुंच गया उस गांव में। वहां पर आज भी वो ककड़ी बेचने वाली आंटी बैठी थी, वो उसे देखकर पहचान गई और उसने बोला कि अरे बाबू आप वही हो ना, अब 1.5 साल पहले यहां से हमारी खुशबू दीदी को बिठा के लेके गए थे, फिर आप कभी आए ही नहीं, आप ऐसा क्यों किए? अब सुमित को लगा कि ये क्या है, मैं यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आंटी भी मेरे लिए, मतलब ये बूढ़ी औरत मेरे लिए यहां पर राह तक रही है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वहां पे कॉर्नर पे एक और बंदा बैठा हुआ था, ऑटो वाला, वो तुरंत आया और बोला अरे साहब आप कितनी देर के बाद आए हैं, चलिए चलिए आपके लिए तो पूरे सारा हमारा ऑटो वाला जो एसोसिएशन है यहाँ पर बैठा रहता है, क्योंकि खुशबू दीदी ने हमारे गांव की हमारे बच्चों की सीरत बदल दी है, वो तो यहीं पे आके बस गई है, दूसरे दिन से आने के बाद वो यहीं पे रुकी है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि किसी ना किसी दिन आप यहाँ पे आओगे, आपका इंतजार तो बड़ा लंबा रहा, क्या बाबू आपने शादी तो नहीं कर ली ना? अब इसी बात पर सुमित आंखों से आंसू आने लगे। वो एक गुजराती में बहुत ही प्यारी मेरी गजल है जिसकी 2 पंक्तियां मैं हर बार किसी मौके पर जगह मिलती है तो मैं बताता हूं। जे आंसू खोऊ छू एनो मने अवेज मळे, के हूं रड़ू तो तुम्हारा नयन मां भेज मळे। शायद खुशबू ने इसी कविता को इसी गजल को अपनी बना लिया था कि मैंने आंसू खोने कि शुरुआत की है तो मैं खोऊंगी, पर इस आंसू का बदला मुझे मिलना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में भी वो प्यार छलकना चाहिए। और उस दिन सुमित वहां पे था, ऑटो धूल उड़ाती हुई सीधी निकलकर सामने कान्हा जी वाला मंदिर वाला चौक था, उसके एग्जैक्टली सामने एक पुरोहित जी का मकान था, उसकी कोने में एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर 3-4 गुलाब के पौधे थे। और सुमित ने अपनी पॉकेट से वो रुमाल निकाला, पेपर रुमाल जिसको उसने अपने कॉटन रुमाल में रखा हुआ था, उसमें कुछ पंखुड़ियाँ थी, वो खोली और वो देखते रहा। वो पंखुड़ियों की खुशबू थी या फिर वो पौधे जो लगे हुए थे उसकी

गुलाब की या फिर उस कमरे में आधी खुली हुई खिड़की से आ रही खुशबू थी, सारी खुशबू दिल को रोमांचित कर रही थी। और जो ऑटो वाला बाबू आया था उसने चिल्ला के बोला, खुशबू दीदी आज आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं कान्हा जी के मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। तुरंत दरवाजा खुला, खुशबू वहां पर खड़ी थी। देर

बाहर देखा जाए तो समय के तौर पे नहीं था, पर हर लम्हा हर क्षण किसी की याद में अगर हमने गुजारनी पड़े तो कैसा लगता है, एक पूरी उम्र की कैद की तरह। ऐसा ही था, थोड़ा सा चेहरा सिकुड़ तो गया था, पर आज भी वो हंसी तो ऐसा लगा कि सारे खिलखिलाहट और चहचहाट पूरे वातावरण में फैल गई। सुमित आगे जाके खड़ा हुआ, अपने घुटनों पर बैठ गया, खुशबू के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमा और कहा, खुशबू सच में ये सही वक्त आने में देर हो गई, बहुत इंतजार किया, पर मैं सही में तुमसे प्यार करता हूं। और उस वक्त बाहर, क्योंकि ऑटो वाले को इस तरह से भागते हुए देखकर पूरे गांव में से जो लोग घर पे थे उसमें से 6-7 उस मोहल्ले में थे वो सारे बाहर खड़े थे, उन्होंने क्लैपिंग कर लिया, वो खुश हो गए क्योंकि वो इस लव स्टोरी के वो साक्षी थे, वो कहते हैं ना कि वो उसके गवाह थे। बात को आगे बढ़ाऊंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: Так, дына, дына!

बक्का पालनपुरी न्यू ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

0: बुलाते
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
2: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह વેચાણ કરવામાં આવશે। તો આવો તારીખ 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો બ્રહ્મર્ષિ હોલ જહાનારા બાગની પાસે પાલનપુર।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: सांभळो, शुं तमे पीएम सूर्यघर मफत वीजळी योजना विशे सांभळ्युं छे?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थमां सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। एटलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु वीजळी पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मां वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो पीएम सूर्यघर.gov.in पर।